0: मलपुर्जा की क़यादत में 10 कोह पैमा ब्रॉड पीक पर लापता हो गए थे। लापता अफराद में नेपाली कोह पैमा भी शामिल थे। इनके अलावा पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और ओमान के कोह पैमा भी शामिल थे। अरशद और उनकी सीनियर क़यादत फौरी तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन को सहूलत देने के लिए हुकूमत और तमाम मुतालिका इदारों के साथ मुसलसल रबते में हैं। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मौसमी और ऑपरेशनल हालात के पेश नज़र हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर सपोर्ट और दस्तियाब रेस्क्यू वसायल जल्द अज जल्द मुतहरक किए जाएँ।
1: इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जंग के खात्मे के लिए मुआहदा तय पा गया है। हमास के सीनियर अहदेदारों ने कहा है मुआहदे में हमास के हथियार हवाले करने और इसराइल फौजों के खत्ते से बतदरीज इनखला की दफात शामिल है। ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से पेशरफ के ऐलान के बाद सामने आए हैं। हमास के एक अहलकार ने कहा ग्रुप अब सालसों और ट्रंप के अमन कौंसल से ताल्लुक रखता है कि इसराइल मुआहदे की शरायत पर अमल दरामद करे। मुजाकरात कार गाजी हमाद ने कहा हमास ने गजा के लोगों को मजीद कतलेआम बेघर होने से बचाने के लिए रियायतें दी हैं।
0: ईरानी फौज ने ऐलान किया है कि कुवैत के अलजाबिर हवाई अड्डे में मौजूद अमरीकी फौज के जंगी तैयारों का हैंगर, सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम और गोला बारूद के गोदामों को कामिकाज़े किस्म के ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने कुवैत में वाक़ अमरीकी अड्डे पर ईरान की फौज की जानब से किए गए हमले के बारे में जारी करदा बयान नशर किया। बयान में कहा गया है कि यह हमला अमरीकी फौज के कल सुबह कशम जजीरे में एक शहरी के घर को निशाना बनाने के जवाब में किया गया है। कुवैत के अहमद अल जाबिर हवाई अड्डे पर किए गए इस हमले में अमरीकी फौज के जंगी साजो सामान को हदफ बनाया गया। बयान में यह भी कहा गया है कि अहमद अल जाबिर अड्डा अमरीकी फिजाई और निगरानी ऑपरेशन में एक अहम किरदार अदा करता है और अमरीकी फौज के लिए एक हयाती अहमियत का फिजाई इमदादी मरकज समझा जाता है।
1: इसराइल जेलों में फलस्तीनी कैदियों के खिलाफ तिब्बी हकूक के खिलाफ वर्जियां मुतवातर से जारी हैं। फलस्तीनी अंजुमन राय असीरान ने खबरदार किया है कि इसराइल जेलों में बंद कैदियों की सेहत की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। अंजुमन की जान से जारी करदा बयान में बताया गया है फरवरी से सिर हिरासत 15 साल नौजवान मोहम्मद हामिद का ओपन हार्ट ऑपरेशन हुआ है, जबकि हिरासत के दौरान जख्मी होने वाले 30 साल कैदी मलक हानी जबरेल का ऑपरेशन के बाद दाया पांव काटना पड़ा। बयान के मुताबिक दोनों सिरान की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। उनके अहले खाना को इनके बारे में मालूम हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा रही। अंजुमन इन हालात की तमाम जिम्मेदारी इसराइल पर आय करते हुए कौमती दाव आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील की है। अदादोशुमार के मुताबिक इसराइल जेलों में तकरीबन 9,400 फलस्तीनी कैदी मौजूद हैं, जिनमें 350 से जायद बच्चे हैं।
0: रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर जुमे की शब हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया, जिनमें 2 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। वोल्गोग्राद के गवर्नर आंद्रे वोचारोव ने कहा कि जुनूबी वोल्गोग्राद में एक यूक्रेनी ड्रोन हमले ने ईंधन और तवानाई के एक मरकज़ और शहर के ज़ीरजिंस्की जिला में गोदामों में आग लगा दी, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा और 5 अफराद जख्मी हुए। वोचारोव ने रूस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स पर लिखा है कि हंगामी इमदादी टीमें इस वक्त जाए वकूआ पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। रूस के ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज ने हमले की तस्दीक की और कहा कि वोल्गोग्राद में उसके एक लॉजिस्टिक सेंटर में आग लगी हुई है। कंपनी ने टेलीग्राम पर कहा कि इब्तदाई इतलात में जान नुकसान की रिपोर्टें मौजूद नहीं हैं और बताया कि लॉजिस्टिक ऑपरेशन को दीगर तनसीबात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि उसने पूरे मुल्क इलहाक शुदा क्रीमिया और बहिर असवद और बहर एजोफ के बानियों में आज शब 371 यूक्रेनी ड्रोन्स को रोका और तबाह किया। यूक्रेन में नेप्रो पेत्रोवस्क इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबरा अलेक्जेंडर हांजा के मुताबिक निकोपोल ज़िला में एक रूसी हमले में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए। यूक्रेनी फिजाइया ने दावा किया कि उसने शुमाली, जनूबी और मशरकी यूक्रेन के ऊपर 195 रूसी ड्रोन्स मार गिराए हैं।
1: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में एक इमारत के जुज़वी तौर पर मुनहदिम होने के नतीजे में इब्तदाई इतलात के मुताबिक 9 अफराद हलाक हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने बताया रियासत के जिला थाने में एक 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस वाक़े में इब्तदाई तयन के मुताबिक 9 लाशें बरामद हुई हैं। हुकाम ने कहा मलबे तले दीगर लोगों के दबे होने का खदशा भी है। हुकाम ने बताया इस हादसे के हवाले से इमदादी कार्रवाई का सिलसिला जारी है।
0: जापानी हुकाम का कहना है कि जुनूब मगरबी जापान में आने वाले हौलनाक जिलजिले से हलाकतों की तादाद 35 तक बढ़ गई है, जबकि रेस्क्यू टीमें सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में मलबे तले जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी रखे हुए हैं। हुकाम ने कहा कि अभी यह तस्दीक नहीं हो सकी कि तमाम अमवात बराह रास्त जिलजिले की वजह से हुई हैं या नहीं। और खदशा जाहिर किया है।

0: अस्सलाम वालेकुम सामिन, आज हम आपको ठीक 105 साल पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो आइए अमासिया करारदाद की तीसरी शिक के हवाले से और मिल्ली आज़ादी का दिफा मिल्लत का अस्मो इरादा करेगा के अल्फाज से आज के सोहबत का आगाज करते हैं। पहली जंग अज़ीम में शिकस्त के बाद सल्तनत उस्मानिया का शिराज़ा अमलन और सेवर समझौते पर दस्तखत से कानूनन बिखर गया। गालिब कुव्वतों ने बामी गढ़जोड़ के साथ दारुल हुकूमत इस्तांबुल समेत अनातोलिया के मुख्तलिफ इलाकों को आपस में बांटकर इन पर कब्जा कर लिया। दौलत उस्मानिया की असम्बली मुंतशिर हो चुकी थी। 16 मई का दिन था और सन था 1919। इस दिन एक 38 साल जर्नेल सरकारी ड्यूटी पर इस्तांबुल बंदरगाह से जिला सामसून रवाना हुआ। यही वो जर्नेल था जिसने तुर्क मिल्लत के कुव्वत और इरादे की मदद से काबिज ताकतों का खेल नाकाम बनाना था। इस जर्नेल का नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 19 मई को सामसून पहुंचते ही फौजी और सिविल हुकाम के साथ मुलाकातें और अनातोलिया पर कब्जे के खिलाफ तहरीक मुजामत की तैयारियां शुरू कर दीं। 21 और 22 जुलाई की दरमियानी शब पूरी दुनिया के लिए अमासिया करारदाद का ऐलान कर दिया गया। ये करारदाद असल में तुर्क जंग निजात के प्रोग्राम की हैसियत रखती थी। करारदाद के तारीखी अहमियत की हामिल पहली चार शिकें इस तरह हैं। नंबर 1, वतन की सालमियत और मिल्ली आज़ादी खतरे में है। नंबर 2, इस्तांबुल हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से माजूर है, ये सूरत हाल हमारे मिल्ली खात्मे की अक्कासी कर रही है। नंबर 3, मिल्ली आज़ादी को दोबारा मिल्ली अस्मो इरादा ही बचाएगा। नंबर 4, मिल्लत को दरपेश सूरत हाल और शराइत के मुकाबले अपने फ़राइज़ को पूरा करने और अपने मिल्ली हकूक से दुनिया को वाज़े और दो टोक शक्ल में आगाह करने के लिए हर नौयत के दबाव और कब्जे से बाला एक मिल्ली हैयत का वजूद ज़रूरी है। सामिन, जैसा कि हम सब बखूबी जानते हैं कि अतातुर्क और इसके मुसल्ला साथियों ने इन शिकों पर हरफ बहरफ अमल करके पहले वतन को दुश्मन के कब्जे से निजात दिलाई और इसके बाद जमहूरिया तुर्की की आज़ादी का ऐलान करके पूरी दुनिया से इसे तस्लीम करवाया। अमासिया करारदाद में वाज़े कर दिया गया था कि इस्तांबुल हुकूमत तुर्की का इंतज़ाम चलाने की सलाहियत नहीं रखती। इस करारदाद ने जंगी शरायत में भी मिल्ली आज़ादी के नज़रिए पर जोर दिया। नतीजतन 23 अप्रैल 1920 को तुर्की कौमी असम्बली खुल गई। तुर्की कौमी असम्बली ने हंगामी हालात के बावजूद मिल्लत के नुमाइंदों की आरा के साथ जंग निजात का नस्ब व ज़ब्त चलाकर तारीख में एक मुनफरद मुकाम हासिल कर लिया। इस तरह हकीकी मानों में मिल्ली इरादे ने मिल्ली आज़ादी को इस्तेमारी कुव्वतों के पंजों से निकाल लिया। सामिन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान मिसबाह शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: کیونکہ